0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1-800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता

0: आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मध्यम लहरी 512.8 दशांश मीटर्स म्हणजेच 585 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे। श्रोते हो, यावेळी सकाळचे 6:05 झालेली आहेत। प्रसारित करीत आहोत भक्ती संगीताचा कार्यक्रम अर्चना। कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला ऐकवित आहोत प्रल्हाद शिंदे यांच्या आवाजात दत्त पाटील यांची भक्तिरचना। या भक्तिरचनेला संगीत दिले आहे मधुकर पाठक यांनी।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेके। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशन को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
6: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
7: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
4: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
8: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लाम रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को

0: मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ते ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त, गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों एंड जॉइंटली इनॉग्रेट भारत इनोवेट्स इवेंट इन नीस टुडे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग लॉन्ग लाइफ मून लैंडर्स capable of surviving up to 200 days, says ISRO chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advancement.

0: सकते हैं बारिश आने का, लेकिन बारिश के आने से हमें कुछ चिंताएं भी आ जाती है। वो चिंताएं मेन होती है कुछ सीजनल इन्फेक्शंस और हेल्थ रिलेटेड कुछ हमारे चिंताएं रहती है, ये सब भी आती है।
1: हाँ
0: तो बारिश आने से हमें पहले ही आई थिंक इस पे सोचकर कुछ ऐसे चीजें हमें मालूमात करनी चाहिए या इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि हम ये इन्फेक्शन से बचे और ये इन्फेक्शन कुछ सीरियस रूप ना धारण करें,
1: हाँ
0: ऐसे हमें प्रयास करने चाहिए।
1: हाँ
0: इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसके बारे में हम कुछ चर्चा कर लें।
1: डॉक्टर, लेकिन मुख्य कारण क्या होते हैं इन बीमारियों के?
0: इन बीमारियों के मुख्य कारण, जैसे ही बारिश होती है तो पानी का जमा होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा जगह जगह सड़कों पे पानी जमा हो जाता है, हमारे घरों के आसपास काफी जगह पानी भर जाता है। तो ये जमे हुए पानी में कई बार मच्छरों की ब्रीडिंग होती है, इसकी वजह से कई इन्फेक्टिव डिजीजेस होती है। तो ये एक कारण होता है। दूसरा कारण होता है पानी का दूषित हो जाना। पानी के दूषित होने से कई बीमारियां फैलती है, जैसे हिपेटाइटिस ए हो गया, टाइफॉइड हो गया, या कुछ और डायरियल डिजीजेस है, इस तरह की जो बीमारियां होती है। उसके बाद जैसे ही एनवायरनमेंट में थोड़ी सी एक नमी आ जाती है या मॉइस्चर बढ़ जाता है, उससे रिलेटेड इन्फेक्शंस भी बढ़ते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शंस हो गए, ये भी एक बीमारी का कारण होता है। कई बार कुछ वायरल इन्फेक्शंस इस मौसम में, यह मौसम जो होता है जब बारिश होती है तो इसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है और इसके कारण में कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, यह एक कारण होता है कि इन्फेक्शंस काफी जल्दी हो जाते हैं।
1: तो ये सब कारण हो सकते हैं, लेकिन अब बहुत बार तो बीमारियां होती ही रहती है, लेकिन बरसात में होने वाली बीमारियों के बारे में जानना क्यों इम्पोर्टेंट होता है?
0: बरसात में होने वाली जो बीमारियां हैं वो देखा जाए तो इतनी सिंपल नहीं होती है। अगर ये इन्फेक्शंस आपको होते हैं तो साधारण इन्फेक्शन से लेके ये कई बार काफी कॉम्प्लिकेटेड भी बन सकते हैं, काफी इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, हॉस्पिटलाइज होते हैं लोग। इसलिए हमें लगता है कि लोगों को एटलीस्ट बेसिक जानकारी चाहिए कि ये इन्फेक्शंस की रोकथाम कैसे करें, हम इन इन्फेक्शन से कैसे बचें। इसीलिए काफी इम्पोर्टेंट होता है जानना कि ये इन्फेक्टिव डिजीजेस कौन सी है।
1: डॉक्टर, आपने कुछ कारण बताए जिसमें मच्छर की वजह से भी बीमारियां होती है बरसात में, तो मच्छरों की वजह से कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं?
0: मच्छरों की वजह से हमने सुना है, जैसे आमतौर पे हम देखते हैं कि डेंगू होता है, मलेरिया होता है, चिकनगुनिया का 2 साल पहले काफी सीरियस एपिडेमिक हुआ था। तो इस तरह की मच्छर रिलेटेड जो बीमारियां होती है ये बीमारियां होती है।
1: तो इसका मेन कारण जो होता है वो मच्छर, यही कारण होता है। तो ये बीमारियां कौन से प्रजाति के मच्छरों की वजह से हो सकती है?
0: जो डेंगू होता है और चिकनगुनिया, ये एडीज मॉस्किटोस फैलाते हैं। ये जो मॉस्किटो होते हैं टिपिकल, ये मॉस्किटोस ब्रीड करते हैं एक साफ पानी और रुके हुए पानी पर। तो ये साफ और रुका पानी यूजुअली हम लोग देखते हैं कि जब बारिश हो जाती है तो हमारे घर के आसपास जो कूलर्स लगे होते हैं समर में उसमें जमा हो जाता है, या फिर जो हमारे पॉट्स होते हैं उसमें जमा रहता है, या कुछ ऐसे पुराने मिट्टी के बर्तन हैं या फिर कुछ चीजें फेंकी हुई है वहां जमा रहता है।
1: हाँ
0: इस जगह पे ये मच्छरों का ब्रीडिंग बहुत अच्छी होती है और यहाँ से वो फिर शुरुआत होती है इन्फेक्शन की।
1: तो इस वजह से ये होते हैं। आपने डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में बताया, मलेरिया जो डिसीज है वो किसकी वजह से?
0: मलेरिया एक एनोफिलिस मॉस्किटो से फैलता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से उसका स्प्रेड होता है।
1: डॉक्टर, ये तो मुख्य कारण हो गए। अब कोई भी डिसीज हो तो उसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, तो हम वन बाय वन डिसीज के बारे में जानेंगे। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, इनके लक्षण क्या होते हैं?
0: सबसे पहले डेंगू देखते हैं, क्योंकि डेंगू काफी ज्यादा केसेस दिखते हैं हमारे एरिया में। डेंगू जो होता है वह एक वायरल इन्फेक्शन है, वह एडीज मॉस्किटो के काटने से होता है और ये मॉस्किटो का टिपिकल एक पैटर्न है कि वे डे टाइम में ज्यादा काटते हैं। बाइट्स जो होती है उनकी डे टाइम में होती है और इसी वजह से ये जो होता है कई बार पता भी नहीं चलता है कि मॉस्किटो ने काटे है करके। तो ये एक स्प्रेड होता है मस्किटो से। अब अगर वो किसी को संक्रमण हो गया या कोई इन्फेक्ट हुआ है तो यूजुअली उसको हाई ग्रेड फीवर आता है, उसको हेडेक्स होते हैं, आंखों के पीछे काफी दर्द रहता है, मसल पेन्स होते हैं, जॉइंट पेन्स होते हैं, काफी वीकनेस आ जाती है।
1: हाँ,
0: और ये सब लक्षण होते हैं। बट अगर वो गंभीर रूप धारण करता है तो लिवर के प्रॉब्लम्स जैसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे उसको जॉन्डिस हो सकता है या कहीं से ब्लीडिंग हो सकता है।

0: मसूड़ों से खून जा सकता है।
1: हाँ
0: ये सब रूप भी डेंगू काफी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं केसेस।
1: हाँ और मलेरिया के लक्षण क्या होते हैं?
0: मलेरिया में एक बुखार आती है, वो चिल्स के साथ आती है, ठंड लेके आती है, और उसका एक पैटर्न होता है मलेरियल फीवर का, जो कि एक टिपिकल टाइम पे आता है, एवरी 24 आवर्स आता है, और उसमें भी काफी हेडेक रहता है, बॉडी एक रहता है, कई बार जैसे हमने बताया जॉन्डिस हो जाता है, वॉमिटिंग होती है, और उसमें भी काफी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे सेरिब्रल मलेरिया हुआ है, उसमें हेडेक्स रहते हैं, काफी बार लोग यानी इवन कोमेटोस भी हो जाते हैं, तो काफी सीरियस रूप भी धारण कर सकते हैं ये इन्फेक्शंस।
1: हाँ, ये मलेरिया के लक्षण हो गए। चिकनगुनिया में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं?
0: चिकनगुनिया एक्चुअली काफी फैला था एक 2 साल पहले, तो हमें काफी केसेस मिले उसके, और उसमें होता था ऐसे कि हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, उसके बाद में सीवियर जॉइंट पेन्स होते थे, जॉइंट पेन्स काफी सीवियर, इवन बॉडी एक रहता था पेशेंट्स को, रैश कई पेशेंट को आती है, इवन मलेरिया और डेंगू में भी रैश रहती है पेशेंट्स को,
1: हाँ
0: जो कि स्किन के ऊपर रेड कलर के ऐसे चत के दिखाई देते हैं,
1: हाँ
0: तो इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं। चिकनगुनिया क्लासिकली जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, तो उसमें आर्थराइटिस वाले सिम्टम्स होते हैं, तो इस तरह के सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं।
1: हाँ
2: श्रोते हो, आपण ऐकत आहात मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, हॅलो डॉक्टर हा कार्यक्रम।
1: ये लक्षण यदि दिखाई दे और कंफर्म करना हो कि यही डिसीज हुआ है तो डायग्नोस कैसे कर सकते हैं?
0: डायग्नोस करने के लिए ब्लड टेस्ट होते हैं, अगर पेशेंट हॉस्पिटल आते हैं तो सिम्टम्स के अनुसार उनके ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे कि कुछ एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, वो लेबोरेटरीज में काफ़ी जगह अवेलेबल हैं और वो आसानी से हो जाते हैं, तो इसमें हमें डायग्नोसिस हो जाता है। कई बार मलेरिया के लिए हमें ब्लड स्मियर्स बनाते हैं हम लोग, वो भी हो जाते हैं, और इस तरह से डायग्नोस हो जाते हैं केसेस। और इलाज का जो है, तो इलाज इनका अगर देखा जाए तो ऐसे स्पेसिफिक कोई मलेरिया के लिए तो दवाइयाँ हैं, बट डेंगू और चिकनगुनिया के लिए ऐसे स्पेसिफिक कोई एंटीवायरल नहीं है, तो इस वजह से इनका जो इलाज है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पेशेंट बहुत सीवियरली डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, कई बार फीवर बहुत हाई ग्रेड होता है और बहुत पेशेंट पेन में रहता है, तो ये सब के लिए उनको आईवी फ्लूइड्स लगते हैं, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट लगते हैं, मॉनिटरिंग लगता है। कई बार पेशेंट्स के डेंगू में आपने सुना होगा प्लेटलेट्स बहुत लो हो जाते हैं, तो हमको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी लगता है कुछ बहुत ही अगर लो हुए हैं तो प्लेटलेट्स, और इस तरह से उनका इलाज होता है।
1: हाँ, तो ये ट्रीटमेंट प्लान हो सकता है, लेकिन डॉक्टर बहुत बार दिमाग में ये आता है कि बीमारी हो ही ना, तो हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि मच्छरों की वजह से जो होने वाली बीमारियां हैं वो ना हो इसलिए?
0: तो इसीलिए हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि ये बीमारियां हो ही ना और हम इसका रोकथाम कैसे करें। तो स्टार्टिंग में ही जैसे हमने बताया, उसका मेन कारण है कि पानी का जमा होना और वो पानी में मॉस्किटो ब्रीड करना, तो इससे बचने के लिए ऑब्वियसली आपको पानी जमा होने ही नहीं देना है। स्टार्टिंग में ही आपको सब अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखना है, सभी तरफ से जो पानी जमा हो रहा है वो सारे ही चीजें खाली कर देनी है। सेकेंड है कि आप प्रिफर करें लॉन्ग स्लीव्स के, फुल स्लीव्स के शर्ट्स और पैंट्स, इस तरह के कपड़े, बच्चों को भी इसी तरह के कपड़े पहना के यूजुअली भेजे, क्योंकि इससे प्रिवेंट होती है बाइट्स। दूसरा है कि आप मस्किटो रिपेलेंट्स यूज कर सकते हैं, और फिर कुछ क्रीम्स आते हैं मस्किटो रिपेलेंट, वो यूज कर सकते हैं। इसके साथ में ही आप जो मस्किटो नेट्स है, या फिर हम विंडोज पे कुछ मस्किटो नेट्स लगा लेते हैं ताकि घर में ना एंटर हो, ये प्रिकॉशंस ले सकते हैं। इंसेक्टिसाइड का छिड़काव आजकल गवर्नमेंट भी काफी अच्छे से सब एरियाज में करवाती है, तो ये हमने अलाउ करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि सुनिश्चित करना चाहिए कि ये हो रहा है बराबर से,
1: तो ये सब
0: तो
1: प्रिकॉशंस हम ले सकते
0: ये
1: हैं।
0: प्रिकॉशंस हैं
1: हाँ
0: इसमें।
1: डॉक्टर, इसके बाद

0: बाद हम बढ़ेंगे दूषित पानी की वजह से होने वाली बीमारियां। तो दूषित पानी की वजह से कौन सी बीमारियां होती है?
1: दूषित पानी की वजह से एक जो एक सीरियस बीमारी होती है वो है हिपेटाइटिस ए। जो हिपेटाइटिस ए इन्फेक्शन है वो जो लिवर को अफेक्ट कर सकता है, उसमें जॉन्डिस जो आपने सुना होगा, वैसे पीलापन आता है, आंखों में पीलापन आ जाता है, स्किन पे पीलापन आ जाता है, पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, काफ़ी बुखार आता है, तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं उसके। ये जो बीमारी होती है दूषित पानी या फिर आप आउटसाइड फूड कंज्यूम कर रहे हैं जो कि प्रॉपरली कुक नहीं है, या फिर स्ट्रीट फूड है जिसमें कुछ दूषित पानी यूज़ हुआ है, तो इस तरह से ये डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट होती है। हमें देखना ये है कि अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, किसी को जॉन्डिस हो रहा है, किसी को फीवर, वॉमिटिंग, ये सब, पेट में दर्द होना, ये सब लक्षण अगर आ रहे हैं तो तुरंत टेस्ट करवाएं। इसके भी टेस्ट अवेलेबल हैं और इसके टेस्ट करवाएं, और अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है या फिर टेस्ट अगर नहीं भी पॉजिटिव आता, लक्षण उसी के हैं, तो फिर उसका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए।
0: हाँ, हिपेटाइटिस ए के अलावा दूषित पानी से और कौन सी बीमारियां होती है?
1: इसमें है टाइफॉइड, एक है जो बहुत कॉमनली पाया जाता है। टाइफॉइड फीवर का भी वही ट्रांसमिशन का मोड है, जैसे कि कुछ कंटामिनेटेड फूड है या फिर कंटामिनेटेड वाटर का यूज़ कर लेना, कंज्यूम कर लेना। तो इसी वजह से हम लोग यूजुअली बोलते हैं कि रेनी सीजन में आउटसाइड फूड अवॉइड करना है, स्ट्रीट फूड अवॉइड करना है, पानी को यूज़ करते समय उसको प्रॉपरली या तो बॉईल करके यूज़ करें या फिल्टर्ड वाटर ही यूज़ करें। तो इस तरह से टाइफॉइड का प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी होता है। टाइफॉइड के साथ में और डिजीज़ेस जो होते हैं दूषित पानी से, वो डायरियल डिजीज़ेस कॉमन होती हैं। तो आपने देखा होगा एक्यूट जो डायरियल डिजीज़ेस से काफ़ी मरीज, स्पेशली जो ओल्ड रहते हैं या बच्चे रहते हैं, वो बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो उनको अगर बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो गए हैं, वॉमिटिंग हो गए हैं, तो डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी सेट इन होता है, और इन पेशेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें जल्दी से जल्दी इलाज कराना चाहिए। उसमें मेन जो होता है, हम लोग ORS का प्रयोग करते हैं, जैसे यूजुअली काफ़ी पता रहता है लोगों को इस बारे में,
0: हाँ,
1: तो ORS है, कुछ मेडिसिंस है, उसके इलाज कराना चाहिए, और उसके लिए तो काफ़ी एंटीबायोटिक्स वगैरह भी आती हैं, तो हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं।
0: हाँ डॉक्टर, इस विषय पर हम जानना चाहेंगे लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे। श्रोते हो, आपण ऐकत आहात मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल मानकापूर चौक कोराडी रोड नागपूर, प्रस्तुत हॅलो डॉक्टर हा कार्यक्रम। आजचा आपला विषय आहे पावसाळ्यातील आजार आणि या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या तज्ज्ञ डॉक्टर सहबा आसिम नेहाल।
2: श्रोते हो, आपण ऐकत आहात मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल हॅलो डॉक्टर हा कार्यक्रम।
0: डॉक्टर, फिर से एक बार स्वागत है प्रोग्राम में। डॉक्टर, आपने बताया कि दूषित पानी की वजह से कौन से डिसीज होते हैं। हिपेटाइटिस ए के आपने कुछ लक्षण हमारे श्रोताओं को बताए, अब टाइफाइड के क्या लक्षण होते हैं ये हमारे श्रोताओं को बताइएगा।
1: टाइफाइड जो होता है उसमें भी बुखार आती है, मेन फीवर रहता है पेशेंट को, और उसके साथ वही बॉडी एक मसल क्रैम्प्स और रैश आ सकती है बॉडी में, यही सब लक्षण होते हैं टाइफाइड के भी। वॉमिटिंग होती है, पेट में दर्द रहता है, तो इस तरह के लक्षण होते हैं। और टाइफाइड के भी टेस्ट अवेलेबल हैं, टेस्ट से डायग्नोस हो जाता है,
0: तो ये ब्लड टेस्ट होते हैं?
1: ब्लड टेस्ट होते हैं, और ब्लड टेस्ट से हमें काफ़ी पता चल जाता है।
0: डॉक्टर, डायरिया के कौन से लक्षण होते हैं और इसका टेस्ट कैसे होता है?
1: डायरियल डिजीजेस जो है ये काफ़ी अलग अलग टाइप के कीटाणुओं से होते हैं, बट जो कॉमन कीटाणुओं से होते हैं उनके भी लक्षण वही लूज वाटरी स्टूल्स जो बोलते हैं हम, और एक आपने सुना होगा कॉलेरा सुना होगा, ये एक ऑर्गेनिज्म होता है विब्रियो कॉलरी, उससे होता है, और इसमें जो स्टूल्स होते हैं ये बहुत ही वाटरी एकदम स्टूल्स होते हैं, जो बहुत जल्दी पेशेंट को डिहाइड्रेट कर देते हैं। तो ये सब चीजों की जानकारी होना जरूरी है। अगर ऐसे सिम्टम्स शुरू हो गए और पेशेंट को कंटिन्यूस

0: वॉमिटिंग हो रहा है, पेशेंट डिहाइड्रेट हो रहा है, तो बेटर है उसका उपचार जल्द से जल्द करना चाहिए, ओआरएस स्टार्ट कर देना चाहिए और जल्दी से ही उसको कोई नज़दीक के क्लिनिक या हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए।
1: हाँ डॉक्टर, टाइफॉइड में भी ट्रीटमेंट प्लान ऐसे ही होता है या कुछ और होता है?
0: टाइफॉइड का भी ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स ही होते हैं। एंटीबायोटिक्स से टाइफॉइड जो माइल्ड केसेस होते हैं वो अच्छी तरह से ट्रीट हो जाते हैं। कुछ सीवियर केसेस हो जाते हैं जो नहीं ट्रीट होते या बहुत सीवियर सिम्टम्स है या डिहाइड्रेशन है पेशेंट को या कुछ, तो उन लोगों को हमें एडमिट करना होता है।
1: तो इस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। अब दूषित पानी से होने वाली डिसीज से कैसे बचा जाए, क्या बताएंगे आप?
0: दूषित पानी के डिजीजेस से बचने के लिए मेन है कि हमें फिल्टर्ड पानी पीना चाहिए, बॉइल करके ठंडा हुआ पानी का उपयोग करना और बेटर है। जहाँ पे ऐसा हमें लगता है कि हमें फिल्टर्ड वाटर अवेलेबल नहीं है तो बॉइल करना चाहिए पानी को, और बस इसी तरह हमें वाटर का हाइजीन चेक करते रहना चाहिए बिफोर कंज्यूमिंग एनी वाटर।
1: हाँ
0: उसके साथ में हमें अवॉइड करना चाहिए बाहर के कुछ स्ट्रीट साइड ये मिलते हैं, कुछ फूड
1: फूड्स।
0: मिलता है या कुछ ड्रिंक्स जूसेस रहते हैं या कुछ, वो भी कंटेमिनेटेड हो सकते हैं, तो बेटर है रेनी सीजन में वो सब अवॉइड करें। थर्ड ये है कि कुछ वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं, जैसे हीपेटाइटिस ए की वैक्सीन्स है जो काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है, तो वो हम लगवा सकते हैं, और इसी तरह से ये डिजीजेस से हमें बचा जा सकता है। इवन फूड हाइजीन भी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है, हैंड वॉशिंग बिफोर प्रिपेयरिंग एनी फूड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें हर बार देखना चाहिए कि हमारे जो कुक कर रहे हैं, हम कर रहे हैं या जो भी कुक कर रहे हैं, वो अपना सेल्फ हाइजीन अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। उसके साथ में आउटसाइड फूड जैसे बोला है अवॉइड करना चाहिए, रॉ फूड अवॉइड करना चाहिए इस सीजन में, फूड प्रॉपरली कुक्ड हो तो ही बेटर है,
1: ओके।
0: ये
1: तो
0: सब चीजें हैं।
1: हाँ डॉक्टर, इसी के साथ आपने कहा था कि वायरल इन्फेक्शंस भी बारिश के मौसम में ज्यादा होते हैं, तो वायरल इन्फेक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं?
0: वायरल इन्फेक्शंस में सबसे कॉमनली हमको फ्लू दिखता है। फ्लू में रनी नोज, खांसी होना, बुखार होना, गले में दर्द, ये सब उसके लक्षण होते हैं, ये कॉमनली दिखता है। फिर कई बार सिंपल जो फ्लू रहता है या सिंपल जो हम कफ एंड कोल्ड, उसको बदल के न्यूमोनिया का भी रूप ले सकता है कई बार। तो न्यूमोनिया जो लंग इन्फेक्शन होते हैं वो सीरियस किस्म के इन्फेक्शंस होते हैं, वो दिखाई देते हैं। तो इस तरह के और भी वायरल इन्फेक्शंस हैं, ये भी होते हैं। इवन वायरल इन्फेक्शंस डायरिया भी कॉज करते हैं, तो ये सब इन्फेक्शंस कॉमनली होते
1: हाँ,
0: हैं।
1: फ्लू के लक्षण आपने बताए कि रनी नोज या थ्रोट में इन्फेक्शन होता है, गला दुखने लगता है, ये सब
0: जी,
1: लक्षण होते हैं। निमोनिया के भी सेम लक्षण होते हैं या कुछ अलग होता
0: निमोनिया
1: है?
0: में, निमोनिया थोड़ा सीवियर फॉर्म का इन्फेक्शन होता है, उसमें ज़्यादातर फीवर आता है, फिर खांसी होती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है कई बार, तो इस तरह के उसके सिम्टम्स थोड़े ज़्यादा सीवियर होते हैं, पेशेंट बहुत वीक हो जाता है। स्पेशली जो निमोनियाज जल्दी होते हैं एल्डरली पॉपुलेशन में, क्योंकि उनका इम्यूनिटी कम रहता है, तो इस तरह से निमोनिया के लक्षण सीवियर होते हैं। निमोनिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, वायरसेस भी कॉज होते हैं उसके,
1: हाँ, तो
0: तो
1: इस वजह से ये
0: हाँ,
1: होते हैं।
0: तो निमोनिया के कई कॉजेस होते हैं, उसमें मेन जो आता है बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, ये सब होते हैं।
1: हाँ, तो इनका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? मतलब कुछ टेस्ट होती है इसके लिए?
0: इसमें पेशेंट को एडमिट करके हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं, फिर एक्सरे कर सकते हैं आप, सीटी स्कैन में पता चलते हैं, ये सब उसके बेसिक टेस्ट होते हैं।
1: फ्लू की भी सेम टेस्ट होते हैं?
0: फ्लू के लिए हम लोग यूजुअली, फ्लू बहुत कॉमन बीमारी होती है तो उसके लिए इतना टेस्ट के लिए हम लोग नहीं जाते हैं, बट अगर कोई पेशेंट को जल्दी ठीक नहीं हो रहा है या फिर कुछ सीवियर सिम्टम्स है और हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसको कुछ हो सकता है, कोई सीरियस रूप ले ले बीमारी, उन पेशेंट्स में हम लोग टेस्ट करवाते हैं।
1: हाँ, तो अब फ्लू और निमोनिया, ये दो जो डिसीज है, इस पे ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है?
0: ट्रीटमेंट फ्लू के तो सिंपल ट्रीटमेंट होता है जिसे हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट बोलते हैं, उसमें वही है जो फीवर कम करने के लिए होता है,
1: हाँ
0: जो यूजुअली डॉक्टर्स देते हैं बुखार कम हो जाए वो दवाइयाँ होती है, फिर उसके बाद में कुछ कफ रिलीफ करने के लिए कुछ मेडिसिन होती है, लॉजेंजेस होते हैं जो गले में

0: थोड़ा इरिटेशन होता है उसके लिए, और हम गार्गल्स एडवाइस करते हैं ताकि वहाँ का जो संक्रमण हो थ्रोट का वो कम हो. स्टीम एडवाइस करते हैं कि जो नेजल पैसेज ओपन होना चाहिए, फ्री होना चाहिए. इस तरह जो सिंपल हमारे ये चीज़ें हैं हम कर सकते हैं. इसके साथ में जो मेडिकेशंस आती हैं वो यूज़ करेंगे तो फिर फ्लू इन्फेक्शन जो है वो जल्दी ठीक हो जाता है.
1: हाँ,
0: साथ में ये जो इन्फेक्शंस होते हैं इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इम्यूनिटी का ठीक होना. तो इम्यूनिटी ठीक रखने के लिए हमें एक न्यूट्रिशियस डाइट लेना है, वाटर इनटेक एडिक्वेट रखना है, जैसे कि एडिक्वेट हाइड्रेशन बोलते हैं हम, पानी अच्छा पीना है, और साथ में कुछ मिनरल्स विटामिन्स ऐसे जो खाने के पदार्थ होते हैं जो न्यूट्रिशियस फूड होता है उसका कंजम्पशन हमें बढ़ाना चाहिए, हमें लेना चाहिए. जैसे फ्रूट्स हो गए जिसमें विटामिन सी मिलता है, बाकी और भी मिनरल्स मिलते हैं, ये सब चीजें हमें ज्यादा लेना चाहिए.
1: हाँ,
2: श्रोते हो आपण ऐकत आहात मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल हॅलो डॉक्टर हा कार्यक्रम.
1: डॉक्टर, निमोनिया के बारे में आपने कहा कि ये हायर स्टेज का डिसीज होता है, तो इसके ट्रीटमेंट क्या होती है फिर?
0: निमोनिया के लिए तो एंटीबायोटिक्स से काफ़ी ठीक होते हैं निमोनियास, बट इट डिपेंड्स कि पेशेंट कितने सीवियर स्टेट में आया है. कई बार एंटीबायोटिक्स से ठीक हो जाते हैं, कुछ पेशेंट्स सीरियस होते हैं उनको हॉस्पिटलाइज करके मेडिकेशंस देना होता है.
1: तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. फिर से एक बार पूछना चाहूंगी कि वायरल इन्फेक्शन जो है इनसे कैसे बचा जा सकता है?
0: वायरल इन्फेक्शंस वायरसेस जो होते हैं, जैसे कि हमने कहा बारिश के मौसम में इन सब वायरसेस का, बैक्टीरिया का, सबका संक्रमण बहुत जल्दी होता है क्योंकि वातावरण बहुत उसके लिए अनुकूल होता है. इससे बचने के लिए हमें मेन है कि ये स्प्रेड होता है एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से, जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस बोलते हैं. तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो हमें अवॉइड करना चाहिए उसे बहुत क्लोज जाने से. क्राउडेड प्लेसेस में आपको ये इन्फेक्शंस बहुत मिल जाते हैं तो अवॉइड करना चाहिए क्राउडेड प्लेसेस में जाना. अगर जाना ही है तो आप मास्क का यूज कर सकते हैं. दूसरा है हैंड वॉशिंग, बहुत इम्पॉर्टेंट आता है कि अगर कुछ इन्फेक्टेड सर्फेसेस हमने टच किए हुए हैं तो हम हैंड वॉश कर ले, वो एक बेटर ऑप्शन होता है. सेल्फ हाइजीन इम्पॉर्टेंट होता है. फिर जैसे कि कहा कि न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी मेंटेन करना है, ये सब चीजों से हम बच सकते हैं.
1: हाँ डॉक्टर, आपने और एक कहा था कि हाइजीन की वजह से या क्लीनलीनेस ना होने की वजह से भी कुछ डिसीज हो सकते हैं, तो क्या हो सकता है इस केस में?
0: हाइजीन में जैसे कि ये एनवायरनमेंट रेनी सीजन का काफी डैम्प होता है, नमी बहुत होती है, तो उसमें फंगल इन्फेक्शन होते हैं. घरों में भी नमी होती है, कई बार जो क्लोथ्स होते हैं वो एडिक्वेट ड्राई नहीं होते हैं, तो इससे भी काफी इन्फेक्शंस पेशेंट्स लेकर आते हैं. तो इन फंगल इन्फेक्शंस के लक्षण वही इचिंग रहता है, कई बार रैशेस रहती है, पेशेंट को बहुत इरिटेशन रहता है. तो इस तरह से जब हमें पता है कि ये फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना है. साथ ही साथ हमको ये देखना है कि घर के अंदर की जो डैम्पनेस है वो कम रखे, अपना घर का हाइजीन अच्छा रखे. दूसरा, अपना खुद आप यूज कर सकते हैं चीजें, जैसे कि कई एंटी फंगल क्रीम्स के साथ पाउडर्स आते हैं, तो वो यूज कर सकते हैं ताकि ये इन्फेक्शंस बढ़े ना. इसके साथ एक और डिजीज दिखती है रेनी सीजन में, कंजंक्टिवाइटिस, आपने देखा होगा. कंजंक्टिवाइटिस होता है आंखों का, आंखों में जो लालपन आ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है ना. तो ये जो कंजंक्टिवाइटिस होता है ये भी काफी रेनी सीजन में फैलता है. तो इसके भी बचाव में मेन वही है कि आपको इन्फेक्टेड पर्सन से बहुत कांटेक्ट में नहीं रहना है. हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है क्योंकि थ्रू हैंड्स ही वो इन्फेक्ट होते हैं आईज, तो हमें हैंड वॉशिंग का बहुत इम्पोर्टेंस रखना चाहिए क्योंकि इसी चीजों से, यही अगर हम हैंड वॉशिंग रखेंगे तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं फैलने से.
1: हाँ डॉक्टर, इतने सारे कारण बताए आपने, मतलब मच्छरों की

0: वजह से भी हो सकता है, दूषित पानी की वजह से भी डिसीज होते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, और क्लीनलीनेस की वजह से भी हो सकते हैं। मतलब बारिश के सीजन में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये ध्यान में आई कि बाहर का खाना नहीं है। तो खाने के ऊपर हम आते हैं कि इन सब चीजों में या फिर इस सीजन में खाने का क्या रोल है, डाइट कैसे होना चाहिए?
1: ये आज के इसमें बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, बिकॉज वी नो कि हम लोग बाहर के खाने पे अभी बहुत डिपेंड हो गए हैं. तो ये कहना कि टोटली अवॉइड करना है बाहर का खाना, ये बहुत मुश्किल बात है.
0: हाँ
1: तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि एक तो वही जगह से खाएं जो कि आपको ऐसा लगता है कि हाइजीनिक है, और जहाँ पे आपको गारंटीड है कि फूड अच्छी तरह से कुक हो रहा है या आपको एकदम हाइजीनिक फूड अवेलेबल हो रहा है, वहाँ से आप खाना मंगवाएं. ये देखें कि खाना स्टेल नहीं हो रहा है, फ्रेशली कुक्ड है, ये इम्पॉर्टेंट है. और जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि कट फ्रूट्स हो गए या वेजिटेबल्स बहुत देर तक रखे हों तो वो काफ़ी ख़राब हो जाते हैं,
0: हाँ
1: ये चीज़ें अवॉइड करनी है आपको. तो बाहर का खाना वैसे तो प्रिवेंट करें, बट अगर बहुत ज़रूरी हो तो आप ये चीज़ों का ध्यान रखें.
0: हाँ और ये सब डिसीज ना हो इसलिए कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं।
1: ये जो डिजीजेस हैं, जो दूषित पानी और दूषित खाने से जो फैल रही हैं, यही जो इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस हैं, वही हैंड वॉशिंग का रोल है, वाटर का प्योर होना ज़रूरी है, वो आप खुद चेक करें, पर्सनली देखें, बच्चे क्या कंज्यूम कर रहे हैं वो चेक करते रहें, थर्ड अपना फूड कैसे कुक हो रहा है और बाहर रखा हुआ खाना कंज्यूम ना करें. इवन घर में भी काफ़ी समय तक अगर खाना रखा हो तो वो भी ख़राब होने के उसके भी चांसेस होते हैं. तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखें.
0: डॉक्टर, प्रोग्राम के अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगी?
1: प्रोग्राम के अंत में मैं यही एक समराइज करूंगी कि जो रेनी सीजन हम ईगरली अवेट कर रहे हैं वो एक बहुत ही आपके लिए सुहावना होना चाहिए, इसलिए आप पहले से कुछ प्रिकॉशंस ले लीजिए कि आगे में हमें कुछ डिजीजेस फेस ना करना पड़े, हमारे सोसाइटी ओवरऑल एक स्वस्थ रहे. उसके लिए जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो हम स्टार्ट कर दें.
0: डॉक्टर सहबा आसिम नेहाल, आप यहाँ पर आई और बारिश के मौसम में होने वाली बीमारियां इस टॉपिक पर हमारे सभी श्रोताओं को मार्गदर्शन किया, मैं आपकी आभारी हूँ। धन्यवाद,
1: थैंक यू वेरी मच.
0: नमस्कार।
1: नमस्कार.
0: श्रोते हो हा होता मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मानकापुर चौक कोराडी रोड नागपूर प्रस्तुत हॅलो डॉक्टर हा कार्यक्रम। आजचा आपला विषय होता पावसाळ्यातील आजार आणि या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन केलं मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या तज्ज्ञ डॉक्टर सहबा आसिम नेहाल यांनी। याबरोबर मी वैदेही चौरे डॉक्टर सहबा आसिम नेहाल यांच्यासह घेते आपली रजा, नमस्कार। या कार्यक्रमाचे प्रायोजक होते मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल मानकापूर चौक कोराडी रोड नागपूर। या कार्यक्रमाच्या सादरकर्त्या होत्या संगीता अरसपुरे।
2: श्रोते हो आपण ऐकत होतात मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल हॅलो डॉक्टर हा कार्यक्रम.
3: हॅलो डॉक्टर हा ध्वनिमुद्रित कार्यक्रम आत्ताच आपण ऐकलात. सादरकर्त्या होत्या संगीता अरसपुरे. हा कार्यक्रम आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून प्रसारित करण्यात आला. आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे. सकाळचे 10 वाजले आहेत. प्रसारित करीत आहोत कार्यक्रम हॅलो मनभावन.
2: हॅलो मनभावन.
4: श्रोते हो हॅलो मनभावन या कार्यक्रमात स्वागत. धावपळीच्या या जगात मनाला हवा असतो तो थोडासा निवांत विसावा. सुखशांती मिळवता क्षणभर न उसंत, नाही मिळाला निवांत, मन राही सदा खंत. म्हणूनच आम्ही घेऊन आलोय मनाला निवांत करणारी मराठी गीत. घेऊया पहिला फोन. हॅलो.
5: हाजी नमस्कार. हॅलो मन भावन मध्ये लागला फोन मॅडम.
4: हो हो नमस्कार नमस्कार, बोला.
5: नमस्कार जी. नमस्कार.
4: कुठे राहता तुम्ही, काय नाव आहे तुमचं?
5: माझे नाव अनिल आहे, मी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा ऐसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ

0: ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक नर्तक नर्तकियों ने भरत नाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की। इस सामूहिक प्रस्तुति को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव का आयोजन भारत की संगमम ग्लोबल अकादमी और श्रीलंका की संगमिज लिया ने किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने एक एक गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी मुंबई अस्मिता वाहिनी 1:05 चित्रपट संगीत

0: करतात. माळरान डोंगरावर गवताळ कुरणे दाटीवाटीने उगवतात. रस्त्याच्या कडेने विविध रानभाज्या शेत जमिनीतून वर येतात. याबरोबरच विविध बुरशीजन्य वनस्पती आपणाला दिसतात, पण पावसाळा सुरू झाला की ही भूचत्राचे रूप धारण करून अवतरतात. झाडाच्या खोडावर, उकिरड्यावर आणि आपल्या अवतीभोवती वेगवेगळ्या बुरशीजन्य वनस्पती दिसतात. या सर्व वनस्पतीमुळे जैवविविधतेची अन्नसाखळी सुरळीत होते. या अन्नसाखळीला पूरक कीटक सूक्ष्मजीवांच्या उत्पत्तीचा काळ पावसाळा आहे. अनेक जीवजंतू प्रजनन काळ हा पावसाळा आहे. माणूस म्हणून आपली सुद्धा आहे, कारण जैवविविधतेच्या अस्तित्वावरच आपले अस्तित्व टिकून आहे. म्हणून याचे जतन करणे व समतोल राखणे आपले कर्तव्य आहे. धन्यवाद.
1: श्रोते हो, आताच आपण पावसाळा आणि जैवविविधता याविषयीची उपयुक्त माहिती ऐकलीत. लेखन निवेदन होतो प्राध्यापक बापूराव आंधळे यांचं. हे आकाशवाणी परभणी केंद्राची निर्मिती होती.
2: 2:15 आता दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्रावरून.
3: के साथ मैं सर फिरोजी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की. श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे. झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत. दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा. 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया. और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे. यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया. नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया. प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया. श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे. भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे. हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे.
4: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा. इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे. राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे. शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा.
3: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा.
5: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा. स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है. ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है. स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा. लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी. स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा.
3: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से

0: योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय

0: तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायोग संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, अरिसा पीठा, चकोली पीठा और मसूर राजा पान की खुशबू फैली हुई है। राजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत।

दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तनकारी अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री

0: मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज प्रश्न ये नहीं है कि भारत में नवाचार हो रहा है या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि भारत के साथ मिलकर कौन नवाचार करे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित एक समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 125 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना ज्यादा धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोमा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने स्वर्ण पदक जीते। फाइनल में रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे देओक को हराया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान से खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा। वहीं रात 1:30 बजे नीदरलैंड्स और जापान होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे। प्रसारित करीत आहोत प्रादेशिक मराठी बातम्या। आकाशवाणी नागपूर संस्कृती भेलोंडे आपल्याला प्रादेशिक बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या। नागरिकांनी पुढाकार घेऊन रक्तदान करण्याचं केंद्रीय आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा यांचं आवाहन। 100व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचं सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात 28 ते 31 जानेवारी 2027 दरम्यान आयोजन। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या वतीनं विदर्भातील पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींचा नागरी सत्कार करण्यात येणार। आणि महिलांच्या टी20 क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेत आज भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना। आता सविस्तर बातम्या। रक्तदान हे एखाद्याला जीवनाची दुसरी संधी द्यायचा सर्वात सोपा आणि प्रभावी मार्ग असल्यानं नागरिकांनी पुढाकार घेऊन रक्तदान करावं असं आवाहन आजच्या जागतिक रक्तदाता दिनाच्या निमित्तानं केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे पी नड्डा यांनी केलं आहे. रक्तदानाबाबतच्या गैरसमजुती दूर करून त्याचं महत्व जनमानसात रुजवलं

0: या गीताबरोबरच आजचा मराठी चित्रपट संगीताचा हा कार्यक्रम आम्ही इथेच संपवित आहोत. ही आकाशवाणी नागपूर केंद्राची निर्मिती होती.
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्. प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः. आदौ मुख्य वार्ताः. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुएल मैक्रोन इत्यनेन सह नीस नगरे प्रतिनिधि मण्डलस्तरीयां वार्तां कृतवान्. अस्यां वार्तायां भारत फ्रांसयोः विशेष वैश्विक रणनीतिक सहभागितायाः अधिक सुदृढीकरणे बलं दत्तम्. रक्षा प्रविधि व्यापारादिषु क्षेत्रेषु सहकार्य विस्तारस्य विषये उभाभ्यां नेतृभ्यां विचार विमर्शः कृतः. फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः मैक्रों इत्येषः वैश्विक नवोन्मेष शक्तिरूपेण भारतस्य उदयस्य प्रशंसां कृतवान्. सः अवदत् यत् अद्य प्रश्नः नास्ति यत् भारतं नवोन्मेषं करोति न वा, अपि तु प्रश्नः अयमस्ति यत् भारतेन सह नवोन्मेषकार्ये कः सहभागी अस्तीति. आयुष मन्त्रालयः

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अद्य बेंगलुरु नगरे विकसित भारत संकल्प समावेशम संबोधयन्ती अवदत् यत् कर्नाटक राज्यम यूपीए शासन कालस्य अपेक्षया पंचगुणितम अधिकम केन्द्रीय कर विभाजनम अवाप्तवत्। वित्त मंत्री अवदत् यत् कर विभाजनस्य माध्यमेन राज्याय चतुर्लक्ष कोटि रूप्यकाणि प्राप्तानि। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माणाय रेल संरचना विकासाय बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक संपथ परियोजनायै पुनर्नवीकरणाय ऊर्जा परियोजनायै केन्द्रीय सहायता प्रदत्ता इति तया उक्तम्। केन्द्रीय श्रम आजीविका राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे वर्या अवदत् यत् प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना विकसित भारतस्य लक्ष्यं प्रति देशः अग्रे

0: श्रोते हो, आपण ऐकत होतात सुगम संगीताचा कार्यक्रम. यानंतर थोड्याच वेळात दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होणारी समाचार संध्या आणि न्यूज ॲट 9 ही बातमीपत्रं, 9:15 स्पॉटलाईट, 9:30 रूपकांचा राष्ट्रीय कार्यक्रम आणि रात्री 10:00 अखिल भारतीय संगीताचा रविवासरीय कार्यक्रम दिल्ली केंद्रावरून आम्ही सहक्षेपित करीत आहोत.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की. दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा. दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया. भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना. महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत. ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया. और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया. और अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की. दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई. प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं. दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया. इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है. 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता

0: और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
3: फ्रंटियर मॉडल्स इज स्पीयरहेडिंग ग्लोबल इनोवेशन।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
4: The world seeks trusted and reliable partners.
5: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
4: And a scale that few can match.
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
6: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
5: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
6: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
3: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचीरस तालुका में महासवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे। इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

0: ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट वन का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: गुड इवनिंग। This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice. Focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice in France. The discussions between two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries across key sectors including defence, technology and trade. Prime Minister Modi was accompanied by the National Security Advisor Ajit Doval, External Affairs Minister S. Jaishankar, Foreign Secretary Vikram Misri and senior officials. President Macron was accompanied by French Minister for Europe and Foreign Affairs Jean-Noël Barrot and other senior officials. The two leaders also interacted during a walk and talk session at Villa Carolos. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palada Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event being held under the India-France Year of Innovation brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders, and premier educational institutions from across the globe. It features innovations across 13 key sectors, including advanced computing, semiconductors, artificial intelligence, clean energy, and others. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted India's startup revolution by saying that the country's youth are developing solutions for global challenges in a number of areas.
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान

0: Hindu, Muslim, Christian, no, it doesn't really matter at all. Just give yourself. The bond becomes stronger. And I wanted to reach out to these people, not with my hands, but with my heart. That's all.
1: Somewhere in your city right now, there is a person who needs blood. You do not know their name. They do not know yours. They may never know you exist, but you could be the reason they see tomorrow. You could be someone's river. One donation can help up to three patients. The thread is there. You can be part of it. Happy World Blood Donor Day. Give blood, save lives.
2: The Thread Between Us, that was a feature on World Blood Donor Day. Written by Pranav Saxena. Narration was by Lucy Chattopadhyay. Other voices included Manoj Mayankar, Sudhir Rajoria, Nisha Bhardwaj, Hongla Form, and Dilip Jha. Produced by Nitish Arora, this was a presentation of Central English Features Unit and came to you from the Delhi station of Akashwani.
3: ये आकाशवाणी है। रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में हम आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री जे एस श्रीराम का गायन। आज रात के इस प्रसारण में श्री जे एस श्रीराम के साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर वीएसपी गायत्री सिवानी, मृदंगम पर विद्वान पेरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
4: दिस इज आकाशवाणी। In tonight's broadcast of Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeeta Sabha, we bring you a vocal recital by Sri J.S. Sriram. He is accompanied on violin by V.S.P. Gayatri Sivani, on Mridangam by Vidwan Peravali Jayabhaskar, and on Ghatam by Sri M. Chandrakant.
3: श्री जे एस श्रीराम एक प्रतिभाशाली कर्नाटक शास्त्रीय गायक हैं और आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। वे अपने आकर्षक और अभिव्यंजक शैली के लिए सुप्रसिद्ध हैं। ये प्रख्यात संगीतज्ञों के परिवार में पैदा हुए हैं। इन्होंने अपनी माँ श्रीमती जे चिद्रूपा लक्ष्मी जी की प्रेरणा से संगीत का अभ्यास प्रारंभ किया और बाद में विद्वान द्वारम सत्यनारायण राव और विद्वान आकेला मल्लिकार्जुन शर्मा जी के मार्गदर्शन में गायन में आगे बढ़े। श्री सूर्वारम प्रताप रेड्डी तेलुगु विश्वविद्यालय में एमए संगीत में स्वर्ण पदक हासिल करके अभी वहीं संगीत में शोध कार्य कर रहे हैं। ये कर्नाटक संगीत के साथ साथ नामसन कीर्तन में भी माहिर है और देश विदेश में मुख्य त्योहारों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक समर्पित अध्यापक बनकर उन्होंने कई विद्यार्थियों को संगीत प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया है और आप ललित कलाओं को बढ़ावा देने वाली संप्रदाय जैसी लाभ निरपेक्ष संस्था में भी स्वच्छंद सेवारत हैं।
4: श्री जे एस श्रीराम इज अ वर्सटाइल कर्नाटिक वोकलिस्ट एंड एन ए ग्रेड आर्टिस्ट विद ऑल इंडिया रेडियो। He is known for his expressive and dynamic style of singing. He hails from a distinguished musical family. Sriram was initiated into music by his mother, Srimati J. Chidrupa Lakshmi. Later, trained under Vidwan Dwaram Satyanarayan Rao and Laya exponent Vidwan Akella Mallikarjuna Sharma. He is a MA Music Gold Medalist from Sri Suravaram Prataparedi Telugu University, Hyderabad, where he is currently pursuing his PhD in music. Equally adept at Carnatic vocal concerts and Nama Sankirtanas, he performs at major festivals in India and abroad. As a dedicated teacher, he has trained many students to concert level. He also volunteers with Sampradaya, a non-profit organization promoting fine arts.
3: श्री जे श्रीराम अपने गायन का आरंभ वालाजी पेटा वेंकटरमना भागवतर की एक कृति से कर रहे हैं जो राग ललिता तथा आदि ताल में निबद्ध है।
4: श्री जे श्रीराम begins his vocal recital with a composition of वालाजी पेटा वेंकटरमना भागवतर in the राग ललिता set to आदि ताल।

0: अब आप सुनेंगे श्याम शास्त्री की एक कृति जो राग पूर्वी कल्याणी तथा विलोम चापू ताल में निबद्ध है.
1: You will now listen to a composition of Shyama Shastri in the rag Purvi Kalyani set to Viloma Chapu Taal.

0: श्री जय श्री राम अपने गायन का समापन त्यागराज की एक कृति से कर रहे हैं जो राग शंकरावर्णम तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री जय श्री राम कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद अ कंपोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग शंकराभरणम सेट टू आदिताल।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: That was तन्यावर्तनम played on मृदंगम by विद्वान पीरवली जयभास्कर and on घटम by श्री यम चंद्रकांत।
0: इसी के साथ आज की अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में श्री जे एस श्री राम का गायन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे वायलिन पर वीएसपी गायत्री शिवानी, मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: विद दैट वी कंक्लूड द वोकल रिसाइटल बाय श्री जे एस श्री राम in the broadcast of Ravivasaraya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. He was accompanied on violin by VSP Gayatri Sivani, on mridangam by Vidwan Peravali Jayabhaskar and on ghatam by Shri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasaraya

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशियन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की